सच बोली जाना, चुप नहीं करना। होर साइज इन्ना कि सिर्फ साड़ी आवाज़ सानू ही सुनाई दे।

हौली हौली अंतर्गत हो ही जाना, फिर सुरती द्वारा अभ्यास करना। जिमें जिमें मन अपना टिकाव चाहता है, अंतर्गत श्वास जाता सुरती द्वारा महसूस करना वाह, बाहर नू श्वास आता सुरती द्वारा गुरु। बंद नहीं करना अपना अभ्यास,

अंतर्गत सुरती द्वारा जदों अंदर श्वास जाता वाहे महसूस करिए, जदों बाहर नू श्वास आता सुरती द्वारा गुरु महसूस करिए, अंतर्गत हो जाइए, अखां बंद करिए।

वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।

वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमागम पारा सब त्यावे है सब त्यावे है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दाता रा।

अखल भवन के सृजनहारे, दास जान मोहि लेहु उबारे, कभ्यो बाच बेनती चौपाई।

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट।

कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता। केलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई। अडिल सुनै गुंग जो जाहे, सुरस न पावई। सुनै मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो

सैस्पन जय अर्ध सैस्पन तीन कहि जय भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा

राजेयस गोविंद दास तुहार रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तं पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दोता गाव हो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सब नागला समरत स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साची साहिबा क्या नाही कर तेरे करतन तेरे सब किश है जिस देहे सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइया कर सांत सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटों हो जिस दिया ए वड़ियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख होवा तित घर अनहद वाजे आनंद सुनहो बड़ पागी हो

काले का गो हंस बनाउंदी गुरु नानक दी बाणी है, गुरु नानक दी बाणी है। तेरे सर ते हाथ बराड़ा, तेरे सर ते हाथ बराड़ा, सतगुर कलगी वाले दा भेद अल्लाह ही खोल सुना दे, नानक नूर।

काले का दो हंस बनाउंदी गुरु नानक दी बाणी है, गुरु नानक दी बाणी है, गुरु नानक दी बाणी है। आए कर दिया जी बाणी जीव दा कल्याण, ते सतगुर रहमत करन अपना सारयां दा होवे कल्याण, क्योंकि सतगुर दी बाणी दा आपां नूं हुक्म आ। ते जेड़ा जेड़ा जीव जो जो सतगुर दी शरण आऊगा उहदे अंदर नाम प्रगट होजू, गुप्ता नाम वरते विच कल युग घट घट हर भरपूर रहिआ, नाम रतन तन हिरदे प्रगटिआ जो गुर शरणाई भज पिआ। इन्नी क विचार करदिआं कविता बोलदिआं बहुत सारियां भुल्लां चुक्कां हो गईआं होणगीआं, संगत ते गुरु साहब बख्शण योग बख्श लैणा जी। आओ फिर आपां हुण सेव अज के 35 कु मिंट तक गुरमुखां पासों गुरबाणी दा हर जस कीर्तन सरवण करदिआं, उन्हां तों बाद फिर अपने बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई मनदीप सिंह जी आपां नूं जो ज्ञान आपां लैण वास्ते आए हैं गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी, वो बड़े ध्यान दे नाल आपां सरवण करांगे। आओ जी गुरमुखो जिन्हां दी ड्यूटी है करिए फिर कीर्तन शुरू। आओ जिन्ना चिर गुरमुख आउंदे आपां सिमरन कर लईए। हाँ जी करिए शुरू। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुमरी गत मित बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लईं ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौन दया वै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ते अंतर के बोलो जी। पंजां प्यारियां

गुरु सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शनम परसियाए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह बल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंद सा जिस पास बैठिया सोहिया

फाग गुरु सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई। जमकार तिस नेर ना आवै, महल सचे सुख पाईंदा। तिन सुख पाया जोत तुफाई, फूरे फाग गुरु सेवा लाई। तीरे हथ है सब बड़े आई, जिस देवे सो पाईंदा।

सहदेहि सुख सच कुमावे। फाणी नू लूचै बहुतेरी अपना फाणा आप बनाएंदा। तेरा भाणा मनी सुमिलै तुत जाए, जिज भाणा खाए सो तुझे समाए। पाने बिच वड्डी वड्याई पाणा किसे कराएंदा। जादी फावे ता गुरु मिलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। तुझे अपना

महल अंदर महल को पाई, गुर कै शब्द सच चित लाई, जिसनु सच दी सोई सच पाई, सच्चे सच मिलाए नाम विसार मन दुन दुख पाया, माया मोह सब रोग कुमाया बिन नाम।

हर की गुण गावा जी हर प्रभावा अंतर नाम शब्द सोहावा गुरुवाणी चहो कुंडी सुनिए सच नाम समाएदा सोजन साचा जी अंतर फाले गुर के शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर सबदी नदरी नदर मिलाए ना बड़े फागयो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द सब अंध अंधेरा गुरमुख किसे बुझाए ना कि

बरे महावार तिथि कर इस जग में सोजी पाएगा। गुरु सेवा ती करनी सार राम नाम राखो गुरु थार। गुरवाणी वरती जगे अंतर इस वाणी ती हर नाम पाएगा। बीद फड़े जंदन बाद संभाले नामन जीत विधा जम काले। दूजे पाए सदा दुख पाए त्रै गुण परम फलाएगा।

परमात्मा मेरा प्यार तेरे नाल होंदा नहीं, हे मेरे सच्चे गुरु मेरा प्यार होंदा नहीं। बचपन तो तेरे नाल

प्यार दे नाल भरी हुई है। इत्थों पता चलता है कि सतगुरु जी किन्ने वैरागी और कितने परमात्मा नूं प्यार करने वाले

गोरे अमरदास कारण करण जिब तू रखै तिब रहौं अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहो गोरे अमरदास कारण करण जिब तू रखै तिब रहौं।

अपत पंच दूत बिखंडियो पलो पुहाल ते ज्योतना निरपत नाथ नानक वर गुर अमरदास सच सलपन

गए मसकत नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: कि राजक रही मैं कि कर्मं करी मैं
1: के सर्वं कली है के सर्वं दली है
0: कि सर्वत्र मान्य कि सर्वत्र दान
1: के सर्वत्र दौड़े के सर्वत्र पौड़े
0: सर्वत्र देशे कि सर्वत्र
1: के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साधे
0: सर्वत्र दीने कि सर्वत्र
1: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
0: सर्वत्र देशे कि सर्वत्र
1: के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
0: सर्वत्र गंता कि सर्वत्र गंता
1: के सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी
0: सर्वत्र काजे कि सर्वत्र
1: के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोख है
0: सर्वत्र त्राणे कि सर्वत्र
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशे
0: सर्वत्र मानिय सदैव पदा
1: के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
0: सर्वत्र भाने कि सर्वत्र मानिय
1: के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
0: सर्वंकने में कि परमं फल
1: के आकल आला में के साहिब कला में
0: हुसन वजू है तमाम
1: हमेशा सलामे सली खुदमदा में
0: शिकस्ते गरीब उल परस
1: बलिम दुल मकाने जमीन उल जमाने
0: जुल तमा मेरा जुवल निदा
1: हरि फुला जी मेरे जाय यकीन
0: तरंग अपीद पंग
1: अधि जुन वाज है गरीब उल खिराज है
0: कुछ रूप है तिर्मुकत विभूत
1: प्रभक्त प्रभा

0: अनंगी अना में त्रिभंगी त्रिका में
1: त्रिवादे अगंजे अगाधे
0: सुबन सर्पागे सुसर्पा अनुरागे
1: स्वरूप है छिजय छूत
0: के नरकम प्रनाथ है पृथुल प्रवास है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
1: सदा है विभुगत प्रवाह
0: अनुक्त स्वरूप है।

0: अनंग स्वरूपे अपंगम प्रभुते
1: परमाते सदा सब साथ
0: अगाध रूपे निर्बाध प्रभुते
1: नामे त्रिवंगी त्रिकाम
0: निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे
1: न पुत्रे न सत्रे न मित्रे
0: न ताते न माते

प्रकाश है कि हम तो सुभाष है, कि हम तो पसा है के आतन प्रभा है, मत पार क्षमता प्रसाद मुन मन प्रणाम।

सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी अजायक बभूते गजायक गनी में चतर चक्रवर्ती चतर

0: सुख भरे प्रज्ञवान पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे
1: जो कल कोई बात दिया है ताके काल दिया है
0: रचा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट रे टटकाला
1: के बाद शरण जाना रो ताके ताज निवार हो
0: विद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्याश्व सके ना कोई।

0: सच्चे साहिब क्या नाही करते रे।
1: सच्चा नाम मेरा आधारो,
0: सच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया।
1: साथ सुख मन आए वसे जिन इच्छा सब पुजाइया।
0: सदा कुर्बान किता गुरु विट्टो जिस दिया ए वडियाइया।
1: कहे नानक सुनो संतो सब तरो पे आरो, सच्चा नाम मेरा आधारो।
0: वाजे पंच सब तित कर सभागे, कर सभागे सबद वाजे।

0: जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: ठाकुर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी दास। तुम मात पिता हम बारिक ते, तुमरी कृपा में कोई न जान। तुमरा अंत ऊचे ते, सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी। तुम ते तुमरी गत मित तुम ही जानी। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लईं त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास ही सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइय जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौने दे आवै ताए, सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके। बोलो जी पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही दे किंडित कीता। तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके। खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां। धर्म निहारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके। खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके। बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तां तां रच्छिया रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान मिसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी। सिखां दा मानी वाह मत उच्ची मत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं वी छोड़िया गया है जी। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण नेताणियां दे तान न्योटियां दी ओड़ सच्चे पिता वाहिगुरु। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी दे हजूर अमृत वेले दे दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवाना अंदर नितनेम जी दीआं बाणियां दे जाप नौवें पातशाह जी आप जी दे सलोकां दे जाप होए। सतगुरु गुरबाणी पढ़दियां आप जी दे हजूर अमृत वेले सईयां दे जाप करदियां होईयां भुल्लां गलतियां दी खिमा बख्शणी। अगे तो सुध ते स्पष्ट गुरबाणी पढ़न विचारन की दात बख्शनी। दाराई संगत नूं अपने दरों घरों गुरसिखी सिदक भरोसा बख्शना। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਦਾਰ ਵਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਬੀਬੀ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰਭਨੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਜੋਦੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰੋ, ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ੋ।

0: सच ध्यान सच जो मर जमे सोका चलका चमला पहला।
1: वड़ी वड़े जा बड़ा ना वड़ी वड़े जा सच ने आओ वड़ी वड़े जा निचल था वड़ी वड़े जाने अलाओ वड़ी वड़े बुझे सब।

सब कूड़ हैं कूड़ रिहाल पटाए अंधन चिंता चिंतवै चिंता बद्दा जाए जमन मरण चुकई हमें कर्म कमाए गुरु शरणाई उबरै नानक लय चढ़ाए सतगुर पुरख अर त्याईंदा सतसंगत सतगुर पाए सतसंगत सतगुर सेव दे हर मेले गुर मेलाए इहो पौजल जगत संसार है गुर बोहित नाम तराए गुर सिक्की पाना मन्या गुर पूरा पार लगाए गुरसिखा की हर तूड़ दे हम पापी पीगत पाहे तुर मस्तक हर पैव लिखया गुरु नानक मिलया आए जम कंकर मार बदारे हर दरगाह ले चढ़ाए गुरु से

गुरुपूरय हर नाम दड़ाया जिन बिचों परम चुकाया राम नाम हर कीरत गाए कर चानन मग देखाया हौ मई मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया गुरमति जम जो न सकै सच्चै नाय समाया सब आप वर्तय करता

सोई सब कमाई, सब कछ तिस दैवासा, दूजी ना है जाए। नानक सुख आनंद पई, प्रभु की मन रजाए।

कुबड़ी कोठाए मिट्टी गलन को मंतरिया नानक से उबरे जिन पाग मथाहे सुतड़े सुखी सुवन्न जोरते से अपना

कमल कुसम चंपके नामा गौराव कानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सामिल श्री राग वह गावै पांचो संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी धरी।

अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खस्तम मेघ राग वह गावे है पांचो संग बरंगन लावे है सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुनगुनी ऊंचा सुरसु हो पुनकीनी मेघ राग स्यों पांचों चीनी।

कृपा करो हो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचार कोई। माटी का क्या तोपा है स्वामी, मानस की गत एही। हम आया दूर हूँ चल के, मैं तकी तो शरणाए जियो। मैं आसा रखी चित मैं, मेरा सबो दुख गवाए जियो। सज्जन सच्चा पात साहो, सिर साहांद साहो, जिस पास बहिट